हेलो, तुसी विक्टोरिया दी शेपर्टन विच 1 FM 98.5 ते पंजाबी संगीत दा प्रोग्राम सुन रहे हो। मैं गूगल अनुवाद दी वर्तों कर दे होए प्रोग्राम लई लिलियन स्टोन नू पार रहा रही हां। मैनू उम्मीद है कि तुसी संगीत दा आनंद मानोगे।

0: कौन है भाई?
1: ओ माता मैं आ, तेरी नो लेके आया।
2: अरे मर जा, तेरे ते गोड़े बड़े सोने हैं।

0: निति ये आजा।
1: की हो गया
2: बेबे? मैं ते ना तू तंग ना।
1: क्यों की होया
2: बेबे? पता नहीं केड़िया फ्रेंडा ने ना दिया जिन्ना फोन ते हस हस के गल्ला करते रहंदे ने वेले इक वेले उन्हां नू मिलन तुर जांदे ने। बेबे मैं लख कोशिश कीती कि मैं शक ना करा पर हुन बंदे नू शक हो ही जांदा है। मियां खसमां नू खाणा
0: तीए बंदे ते तीवी दा झगड़ा तां मुंड कदीम तो रिहा है नाल केड़ी जनानी है जिहड़ी आपदे खसम तो सुखी है नहीं क्यों संतिए?
3: आहो बेबे मैं ता रोज झांबी लौनी आ मोया डट वांग बोतल ची वड़िया रहिंदा बुच्छड़ जिहा किसे थां दा।
4: दो महीने हो गए मैं ता इन्हां नू बुलाउणा ही छड़ता जप्पियां भावें पंजाह पा लिए सौ लगे जे मैं इन्हां नाल गल भी कीती होवे।
0: गल सुनती है तू फिक्र ना कर सब कुछ ठीक ठाक हो जूगा तू एक गाना सुन तेरा मूड ठीक हो जू। नहीं निकिए नहीं ओ की कहनियां होनियां तुसी अंग्रेजी च?
5: बेबे कीप काम एंड लिसन टू दिलजीत दोसांझ।
0: याओ बड़ा क्यूटू जा मुंडा है नहीं बिल्कुल तेरे पापे वर्गा ओदा गाना सुन। नहीं कुड़ियो नहीं आओ नहीं नहीं आओ भज्जो सारियां नहीं इस चबारे नू बना दिए अपन डिस्को।

मेरे लिए अलविदा कहन दा समा है। सुनन ले तुहाडा बहुत धन्यवाद। मैनू उम्मीद है कि तुसी संगीत दा आनंद मानिया है अति ओ गूगल अनुवाद काफी सही सी। जेकर तुसी 1FM 98.5 ले वॉलंटियर बनना चाहुंदे हो, अपनी भाषा विच संगीत चलाउना चाहुंदे हो अते अपने स्थानक भाईचारे ले महत्वपूर्ण मुद्दियां अते समागमां बारे गल करना चाहुंदे हो, ता कृपा करके मेरे नाल 0498985011 ते संपर्क करो, जा whiteswanlily@gmail.com ते ईमेल करो whitaswanlily@gmail.com। मैं लिलियन सटोन हां, तुहाडा धन्यवाद अते चंगी रात।